0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ

0: एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफिम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi posted a fresh video message on his Instagram handle last night, thanking everyone for the responses and positive suggestions received to his previous video, where he had announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the fresh video message, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now. The earlier record was 300 million views. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency, NTA, has terminated 47 officials from service. This is part of a complete overhaul of the NTA following controversy over paper leaks. Delhi Police has constituted a special task force to investigate offences relating to paper leaks and

0: मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। और आज के इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ, मैं राधा पाठक
1: और मैं हूँ दीपा भूषण।
0: हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार। राधा कैसी हो?
0: बहुत अच्छी हूँ,
1: बहुत दिन बाद मुलाकात।
0: हाँ, आपकी मुस्कुराहट देख के तो वैसे भी मन में बहुत प्रसन्न हो जाता है।
1: और देखो राधा, मौसम सुहाना हो रहा है और हमारे श्रोतागण घर आंगन कार्यक्रम सुनने के साथ साथ सुहाने मौसम का भी आनंद ले रहे हैं।
0: और इस आनंद को और बढ़ाने के लिए हम घर आंगन कार्यक्रम में ले आए थे सारी काम की बातें और सुरीली खूबसूरत गीत। दीपा जी, कौन सा सुंदर विचार लेकर आई हैं आप?
1: बिल्कुल राधा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, बल्कि जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते हमारे साथ हैं, उनमें जीवन यानी सच्चाई और अपनापन होना बहुत जरूरी है।
0: सच में दीपा, ये एक बहुत सुंदर संदेश है। जीवन में रिश्तों की संख्या नहीं, बल्कि उनमें प्रेम, विश्वास, ईमानदारी और अपनापन सबसे अधिक मायने रखता है। और जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, वही जीवन के सच्चे अर्थों में समृद्ध और सुखद बनाते हैं।

है घर आंगन, आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3।

0: खाना हम आगे अपने कार्यक्रम घर आंगन में, जहां अपनी महिलाओं और श्रोताओं को हम ठीक सारी जानकारी देते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आए हैं हम। देखिए ये गीत हमने सुना कोहिनूर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: और दोस्तों, अब हम आज बात करेंगे मैदान की, मेडल की नहीं बल्कि उस मजबूत व्यक्तित्व की जो मैदान से निकल कर आता है।
1: बिल्कुल, हम अपनी बेटियों की पढ़ाई, अच्छे स्कूल, करियर और भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हम उतना ही ध्यान इस बात पर देते हैं कि हमारी बेटियां किसी न किसी खेल से भी जुड़ी हों?
0: बिल्कुल दोस्तों, और यही तो बात है, अक्सर खेल को हम अक्सर सोचते हैं कि ये मनोरंजन या खाली समय बिताने का साधन है, लेकिन सच तो ये है कि खेल जीवन की सबसे अच्छी पाठशाला है।
1: बिल्कुल, और खेल जो है वो सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाते बल्कि मन और व्यक्तित्व को भी गढ़ते हैं। खेल सिखाते हैं अनुशासन, समय का महत्व, हार के बाद दोबारा उठना, जीत के बाद विनम्र रहना, सही समय पर सही निर्णय लेना, और सबसे बड़ी बात है दीपा, दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना।
0: बिल्कुल सही कहा राधा। और दोस्तों, खेल का मतलब केवल क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन नहीं है। अगर आपकी बेटी को दौड़ना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हो सकता है उसे शतरंज पसंद हो, किसी को तीरंदाजी अच्छी लगती है, किसी को शूटिंग, किसी को तैराकी।
1: और जब परिवार विश्वास करता है तो बेटियां कमाल करती हैं। हमारी बेटियां लगातार विश्व स्तर पर भारत का परचम लहरा रही हैं।
0: और राधा, इसके पीछे क्या है, एक ऐसा परिवार जिसने कहा खेलो हम तुम्हारे साथ हैं, यही विश्वास किसी भी बेटी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
1: और दीपा, मुझे लगता है कि हर बेटी का लक्ष्य मेडल जीतना होना भी नहीं चाहिए। खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे व्यक्तित्व निखरता है, आत्मविश्वास आता है, लोगों में घुलना मिलना सीखा जाता है, समाज को समझा जा सकता है, चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और मानसिक रूप से मजबूती भी मिलती है।
0: और बिल्कुल आज राधा, बिल्कुल सही बात कही तुमने। और आज तनाव, प्रतिस्पर्धा और तेजी से बढ़ती दुनिया में मानसिक मजबूती सबसे बड़ी आवश्यकता है। खेल हमें सिखाते हैं कि हर हार अंत नहीं होती बल्कि अगली जीत की तैयारी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कि हर हार जो है वो अंत नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में ये सबक बहुत जरूरी है कि हार अंत नहीं होती बल्कि अगली जीत की तैयारी होती है। याद रखिए दोस्तों, खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार मेडल नहीं होता, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है एक स्वस्थ शरीर, एक सशक्त मन, सही निर्णय लेने की क्षमता, अनुशासित जीवन और सकारात्मक व्यक्तित्व।
0: तो आइए दोस्तों, आज हम एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, अपनी बेटियों को सिर्फ पढ़ने का ही नहीं खेलने का भी पूरा अवसर देंगे, क्योंकि जब एक बेटी खेलती है तो केवल एक खिलाड़ी नहीं बनती, वह जीवन की हर चुनौती का सामना करने वाली एक सशक्त नागरिक बनती है।

0: एफएम गोल्ड पर चल रहा है कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है जी, घर आंगन, और हम अपनी महिलाओं से, श्रोताओं से बातें कर रहे हैं ढेर सारी। आज है 25 जुलाई जब मनाया जाता है विश्व डूबने से बचाव दिवस यानी वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पानी में डूबने की घटनाओं और उससे होने वाले हादसों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है।
1: बिल्कुल राधा, तुमने सही जानकारी दी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल बहुत से लोग पानी में डूबने से अपनी जान गंवा देते हैं,
0: और इसके बचाव के उपाय भी बता दीजिए दीपा जी।
1: इसके बचाव के लिए पानी तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए बैरियर लगाना बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना, तैराकी सिखाना और सुरक्षित बचाव तकनीकों का प्रशिक्षण देना राधा बहुत जरूरी है।
0: जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि खेल सीखना सिखाने चाहिए बच्चों को, तो तैराकी भी उसी में आता है कि तैराकी भी हमें अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए।

0: ठंडी हवा काली घटा, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस 55, गायक कलाकार थे गीता दत्त और साथी। और राधा, अब तुम कहो तो कुमाऊं की बात करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक गीत तुमने सुना होगा, बेड़ू पाको बारमासा, सुनाया गया। हाँ, ये कुमाऊं से बहुत फेमस गीत है। और ये धुन सुनते ही मन जो है उत्तराखंड

0: की हरी भरी वादियों में पहुंच जाता है। और दोस्तों, उत्तराखंड की पहचान सिर्फ उसके पहाड़, नदियां और लोकगीत ही नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं भी हैं। और ऐसी ही एक खूबसूरत परंपरा है पिछौड़ा, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं।
1: पिछौड़ा यानी दुपट्टा, जिसे विवाहित महिलाएं लहंगे या साड़ी के ऊपर ओढ़ती हैं। ये पीले और लाल रंग का होता है और उसपे कुछ डिजाइनिंग होती है। एक सुंदर और पारंपरिक परिधान है। एक बात और मुझे याद आई यहाँ दीपा, कि दिल्ली में हम जो ये पिछौड़ा तरीके का दुपट्टा हम ओढ़ते हैं, जो हम दिल्ली के महिलाएं किसी भी त्योहार पे, उसे हम बोलते हैं पीलिया।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो उसी तरीके का होता है, बस थोड़ा सा डिजाइन चेंज होता है।
0: अच्छा अच्छा, बिल्कुल राधा। और कुमाऊं में इसे विवाह, जनेऊ, नामकरण, देवी पूजन, हरेला, नवरात्र और दूसरे मांगलिक अवसरों पर महिलाएं बड़े सम्मान के साथ इसको धारण करती हैं। खासकर विवाह में दुल्हन को पिछौड़ा ओढ़ाने की परंपरा सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना से भी जुड़ी है।
1: और दीपा, इसकी बनावट भी बहुत खास होती है। पारंपरिक जो पिछौड़ा होता है वो हल्के पीले या केसरी रंग के कपड़े पर बनाया जाता है। उस पर लकड़ी का नक्काशीदार मोहरों से लाल रंग के सुंदर डिजाइन छापे जाते हैं। और पीला और लाल रंग मिलके जो खूबसूरती आती है ना,
0: बहुत
1: ही खूबसूरत होता है,
0: बहुत प्यारा लगता है राधा। और इसके बीच में स्वस्तिक, सूर्य, चंद्रमा, शंख, घंटी, कलश और कमल जैसे शुभ प्रतीक बनाए जाते हैं, जो सुख, समृद्धि और मंगल का संदेश देते हैं।
1: वाह वाह वाह, यानी पिछौड़े का हर रंग और हर आकृति अपने आप में एक कहानी बताती है।

युवा फिल्म का ये गीत हमने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। और राधा, हम फिर आ जाते हैं जो हम बात अभी कर रहे थे अपने श्रोताओं से पिछौड़े की, कुमाऊं के, और एक रोचक बात में और बताना।

0: चाहूंगी कि जो पहले पिछौड़ा जो था पूरी तरह से हाथ से ही बनाते थे, अब लकड़ी के ब्लॉकों से छपाई की जाती थी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग आता था। आज भले ही आधुनिक तकनीक आ गई है, लेकिन आज भी हाथ से बने पारंपरिक पिछौड़े की पहचान और सम्मान आज भी कायम है। आज भी लोग उसी तरह से उसको देखते हैं।
1: मुझे तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है दीपा कि आज की युवा पीढ़ी भी अपनी संस्कृति से जुड़ रही है, चाहे वो देश हो या विदेश। शादी और धार्मिक अवसरों पर गर्व से पिछौड़ा पहना जाता है।
0: बिल्कुल, और इसमें स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों और शिल्पकारों का भी बड़ा योगदान है। वे इस पारंपरिक कला को जीवित रखे हुए हैं। इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहती है और स्थानीय लोगों को राधा देखो रोजगार भी मिल जाता है।
1: और पिछौड़ा जो है वो सिर्फ एक परिधान नहीं होता, बल्कि हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी परंपरा है और हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है और जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ता है।

0: अभी आपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का एक गीत सुना, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी की। और दीपा, हम बात करेंगे अब एआई की। जी हाँ, आजकल तो एआई बहुत चल रहा है,
1: बहुत,
0: क्योंकि मशीनों में इंसानों जैसी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता है। आज हमारे दैनिक जीवन को आसान और तेज और स्मार्ट बनाने के लिए जो एआई है वो बहुत प्रमुख साधन बन चुका, पहले से ही है। अब गूगल मैप्स खोलते हैं, हम मैप देखते हैं, कहीं जाते हैं, कोई नई भाषा सीखनी होती है, कोई भी हम सोशल मीडिया में गाने देखते हैं या फिल्में देखते हैं, वो सब एआई ही तो है। अब डिजिटल तकनीक जो है, ये हर पल बदलती दुनिया में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। इसकी बहुत जरूरत होगी, हर समय इसकी जरूरत है हमें। लेकिन अब एआई से जुड़ी नई नई जानकारियां, एप्स और टूल्स की जो भरमार है ना, उसने तनाव को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई हमारे काम को आसान बनाने के लिए आया है, लेकिन यदि इसका उपयोग संतुलित तरीके से न किया जाए तो मानसिक तनाव भी हो सकता है। हर समय नई तकनीक को अपनाने और उसके बारे में जानने की कोशिश लोगों को तनाव में डाल रही है। अब इसके कुछ उपाय आप दीपा जी बताइए।
1: हाँ, मैं बिल्कुल अपने श्रोताओं को इसके उपाय बताती हूँ। इसके लिए आप आवश्यक नोटिफिकेशन ही चालू रखें, स्क्रीन टाइम सीमित करें, काम के दौरान बीच बीच में छोटा सा ब्रेक जरूर लें, एआई का उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार करें, हर नई तकनीक को तुरंत अपनाने का दबाव न डालें, दिन में कुछ समय मोबाइल और इंटरनेट से पूरी तरह दूर रहें। ये तो बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल, क्योंकि लेकिन डिजिटल दुनिया से पूरी तरह से जो दूरी बनाना ना, बिल्कुल संभव नहीं होता, लेकिन उसका संतुलित उपयोग हम कर सकते हैं। हमें अपने दिमाग में सोचना होगा कि हम बैलेंस कैसे बनाए, कब फोन का इस्तेमाल करना है, कब एआई का इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है। यदि हम एआई और डिजिटल साधनों का समझदारी से उपयोग करेंगे तो इसके लाभ भी मिलेंगे और मानसिक तनाव से भी बचा जा सकता है।

0: अभी आपने गीत सुना दिल तेरा दीवाना है सनम। फिल्म थी दिल तेरा दीवाना, गायक कलाकार थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी।
1: गोल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और आज का इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ, मैं राधा पाठक
0: और मैं हूं दीपा भूषण।
1: बातें कर रहे हैं हम काम की, अपनी महिलाओं की, अपने श्रोताओं के काम की बातें हम आपको बता रहे हैं, और अब बात करेंगे बहुत जरूरी, जो किचन से भी जरूरी मतलब जुड़ी हुई है दीपा, और हम बताने वाले हैं गीला और सूखा कचरा प्रबंधन यानी अपशिष्ट प्रबंधन। अब देखिए घर में जो भी निकलता है कचरा तो उसे डिवाइड करना बहुत जरूरी है, अभी तो सारा इकट्ठा कर दिया जाता है, कई महिलाएं उस कचरे को अलग अलग भी करती हैं, बहुत काबिले तारीफ है ये बात कि वो अलग अलग रखती हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं कि गीला और सूखा कचरा प्रबंधन दो मुख्य हिस्से हैं। गीला कचरा सड़ने वाला जैविक कचरा होता है जिससे खाद बनती है जो हरे डिब्बे में जाता है, और सूखा कचरा नहीं सड़ने वाला रिसाइकिल योग्य कचरा होता है, वो नीले डब्बा होता है, इसे अलग रखना पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है।
0: और दोस्तों जो गीला कचरा है ये पूरी तरह से जैविक होता है और प्राकृतिक रूप से सड़ जाता है, इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, चाय की पत्तियां, अंडे के छिलके और पौधों की पत्तियां। गीले कचरे के लिए हम हरा डस्टबिन का उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल सही बताया दीपा, क्योंकि जैसे घास का रंग हरा होता है ना, ऐसे सोचा जा सकता है कि हम उसे खाद बना देंगे तो हरा डस्टबिन हमें याद रहेगा, और जो सूखा कचरा होता है ड्राई वेस्ट वो नीला डस्टबिन में जाता है जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है और आसानी से प्राकृतिक रूप से वो नहीं सड़ता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं, पॉलिथीन है, दूध के खाली पैकेट हैं, कागज है, गत्ते हैं, धातु के डिब्बे हैं, कांच है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है वो सूखा कचरा होता है। एक बात और है, जो कांच है ना नीले में डाल सकते हैं, लेकिन अलग से पॉलिथीन में पैक करके अगर उसे ब्लैक में दिया जाए, क्योंकि वो हैजार्डस वेस्ट होता है, कि वो खतरनाक होता है, तो उसे अलग से दिया जाना चाहिए।
0: और अब मैं बताना चाहूंगी श्रोताओं को कि सूखे और गीले कचरे को अलग क्यों करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: है ना, गीले कचरे से जैविक खाद तैयार की जाती है, सूखे कचरे को रिसाइकिल करके नई चीजें बनाई जाती हैं। यदि दोनों को मिला लिया जाए तो बदबू पैदा होती है, कचरे का रिसाइकिल नहीं हो पाता और बीमारियों के पनपने का खतरा बढ़ जाता है।
1: इसलिए अपने किचन में और घर में हर जगह ध्यान रखिए कि गीला कचरा हमें अलग रखना है और सूखा कचरा अलग।
2: तुम्हें क्या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
3: क्या है

0: और अपने दिल में जो भी बात है वो हमारे श्रोताओं को भी कहनी है कि ये कार्यक्रम उन्हें हमारा कैसा लग रहा है। हमारी ईमेल आईडी पे fmgolg@gmail.com पे बता देना है कि ये कार्यक्रम कैसा लगता है और क्या क्या चाहते हैं इस कार्यक्रम में। ये गीत हमने लिया था दीवार फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। और राधा, बारिश का मौसम है, देखो कभी ना कभी घूम फिर के बारिश आ रही है, कभी धूप भी आ जा रही है,
1: और दिल्ली में कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही है, और मौसम बड़ा सुहावना है,
0: बहुत सुहावना। और राधा, बरसात की रिमझिम फुहारें हों और ठेले पर ताजे ताजे जामुन दिख जाएं तो मन अपने आप उनकी ओर खींचा चला जाता है।
1: बिल्कुल दीपा, और जामुन खाते ही सबसे पहले जीभ का जो बैंगनी हो जाना है ना वो याद आता है।

0: जो फल जिस मौसम में मिले उसका आनंद उसी मौसम में लेना चाहिए।
1: तो दोस्तों, इस बरसात में जामुन जैसे ताजे और मौसमी फलों को जरूर खाएं, और हाँ, खाने से पहले इन्हें अच्छी तरह धोना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्रकृति के इन अनमोल उपहारों का आनंद लीजिए।

0: लव इन टोक्यो फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत है दीपा, और हम चाहते हैं श्रोताओं से इजाजत,
1: और हम भी सायोनारा कहें।
0: सायोनारा, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।

अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं।

संभावना है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपाय से जुड़ी मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के नगर पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित

जाने के बाद भी दिलों में अपनी जगह बनाए रखते हैं। बिल्कुल, हम ऐसी ही कई सारी फिल्म आपके साथ साझा करते हैं इस कार्यक्रम में, और आज भी हम एक ऐसी ही कालजयी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसने हिंदी सिनेमा को एक नई फिल्म की कहानी से जोड़ दिया, एक नए आत्मविश्वास और मानवीय संवेदनाओं से जोड़ दिया, एक ऐसी मिसाल जो आज भी दर्शकों के मन को छू जाती है। तो चलिए इस फिल्म को इस गीत से पहचानने की कोशिश कीजिए कि हम आज किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं।

जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने श्रोताओं, ये फिल्म है दिल एक मंदिर। साल 1963 में आई इस फिल्म का निर्देशन किया था सीवी श्रीधर ने और फिल्म में राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी ने अपने सशक्त अभिनय से कहानी को जीवंत बना दिया। वहीं अगर हम संगीत की बात करें तो यहां शंकर जयकिशन के मधुर संगीत और शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के गीतों ने इस फिल्म को अमर बना दिया। आज के सफर में हम एक ही

तो दोस्तों, ये था दिल एक मंदिर का एक बहुत ही शानदार गीत, जिसे सुनकर आज भी दिल में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तो चलते हैं फिल्म की कहानी की तरफ। कहानी एक ऐसे दंपत्ति की है जो प्यार में, सच्चे प्यार में डूबे हुए होते हैं। कहते हैं कि सच्चा प्यार केवल साथ निभाने का नाम नहीं होता, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे के लिए त्याग करने का नाम होता है। और ऐसी ही भावनाओं से भरी फिल्म है ये दिल एक मंदिर की कहानी। कहानी एक शादीशुदा जिंदगी और प्यार और विश्वास से भरी हुई है, जिसमें एक दंपत्ति होता है जिनकी जिंदगी में प्यार और विश्वास कूट कूट के भरा होता है। लेकिन अचानक उनकी खुशियों पर संकट आ जाता है जब कहानी में पति का किरदार निभाने वाले अभिनेता की गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इलाज की जिम्मेदारी होती है एक मशहूर डॉक्टर के हाथों में। आखिरकार कहानी में भावनात्मक मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि ये जो डॉक्टर हैं, वो कभी पत्नी के पुराने प्रेमी रह चुके हैं। अब डॉक्टर के सामने एक कठिन परीक्षा है, क्या वह अपने पुराने प्रेम को याद करेगा या अपने पेशे की शपथ निभाकर मरीज की जान बचाएगा। कहानी का अगला भाग हम आपको इस गीत के बाद बताएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ।

तो दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे फिल्म की कहानी की, जिसमें डॉक्टर साहब के पास ये कश्मकश होती है कि वो अपने प्यार के साथ जाएं या फिर अपने पेशे के साथ। वहीं दूसरी ओर पत्नी अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहती है और हर परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ती। तो आखिरकार डॉक्टर अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य निभाते हैं और मरीज का सफल इलाज करते हैं। आखिरकार फिल्म का संदेश भी यही है कि जो सच्चा प्रेम होता है श्रोताओं, त्याग, ईमानदारी और कर्तव्य में छिपा होता है। रिश्तों की जो मजबूती होती है ना, वो विश्वास और समर्पण से बनती है, ना कि केवल भावनाओं से। ऐसी ही न जाने हिंदी सिनेमा में कितनी फिल्मों की कहानी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ फिल्म

में और उनके संगीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ कितनी भी समय निकल जाए वो बदलते नहीं है। समय ज़रूर बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन जो अच्छा संगीत होता है ना वो अपना आकर्षण कभी भी होता नहीं है या कम नहीं होने देता। यही एक कारण है कि दिल एक मंदिर के गीत जो हैं आज भी रेडियो, संगीत मंचों और श्रोताओं की यादों में उतनी ही ताज़ा हैं जैसे कि

तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गीत जरूर पसंद आया होगा। सुमन कल्याणपुर की आवाज और शंकर जयकिशन का संगीत। अपने भाव, संगीत और गायकी के कारण ऐसे तमाम गीत आज भी श्रोताओं की पसंद बने हुए हैं। आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये फिल्म दिल एक मंदिर और इससे जुड़े सदाबहार गीत और उनकी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजिए। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे एक और यादगार फिल्म और उसके मधुर गीतों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दुर्गेश सरस्वत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। चलते चलते सुनते हैं ये इसी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:50 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਰਦੂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1,00,000 से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी है। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। आज सरकार और CJP के दरमियान इम्तिहानात में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदामात पर तीसरे दौर की गुफ्तगू होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं, जिनमें पेपर लीक और मुतल्लिका बदगुमानियों के मामलात की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्कॉश की खवातीन की आलमी जूनियर चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और भारत और जिम्बाब्वे की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान आज तीसरे पहर हरारे में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बताई जाती है। वहां 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। खबरों में कहा गया है कि शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिले में सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। मजीद 14 अफराद के हिलाक होने की खबर मिलने के बाद सैलाब से वाबस्ता वाकयात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो गई है। धीखू, दीसांग और धानसीरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सूरत हाल और बिगड़ गई है। बचाव इमदादी काम जारी हैं। आफात से निमटने वाली टीमें और जिला हुकाम मुतासर इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब सरमा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वजीर आजम ने सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कामों की पेशरफ्त वगैरह के बारे में जानकारी हासिल की है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम ने बाजाबादकारी, तामीर नो की कोशिशों और इमदादी कामों के लिए मरकजी सरकार की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। उधर गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद बचाव और इमदादी काम जंगी पैमाने पर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 265 तालुका में बारिश हुई है। रियासत की इमदाद से मुतालिक कमिश्नर ने बारिश से वाबस्ता वाकयात में 5 अफराद की जानें तलफ होने की तस्दीक की है। खबरों के मुताबिक भारत के साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। हुकाम ने बचाव और इमदादी काम तेज कर दिए हैं और मुतासरा इलाकों के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

0: आज फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन मुअत्तल रहने के बाद आज से ये यात्रा शुरू हुई है। हुक्काम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके और यात्रा खुशुसलूबी से जारी रह सके। यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि वो इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायात पर सख्ती से अमल करें। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि ऐवान में गुजारा जाने वाला हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर लम्हा जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में राज्यसभा के 9 मुंतखब और नामजद अरकान के लिए मुनाकदा 2 रोजा तारुफी व तरबियती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहस मुबाहसा हमेशा किसी नतीजे और फैसले तक पहुंचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आषाढ़ी एकादशी के पवित्र मौके पर शहरियों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये शुभ दिन अकीदत और हमदर्दी के अबदी पैगाम का है। वज़ीर-ए-आज़म ने दुआ की कि भगवान विट्ठल का आशीर्वाद सभी के लिए खुशी, भाईचारा और खुशहाली लेकर आए और मुल्क को एक बेहतर मुआशरे की जानिब रहनुमाई करे। हुकूमत आज सहपहर नई दिल्ली में CJP के वफ्द के साथ तीसरे दौर की बातचीत करेगी। इस बातचीत में इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक को रोकने के इकदामात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग सहपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनाकिद होगी। इससे कबल मरकजी वजरा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP के वफ्द से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए JP नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात से मुतालिक CJP के मुतालबात को पूरी संजीदगी और तवज्जो से सुना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतों को नामजद किया है जिनमें इम्तहानात का पर्चा लीक होने और मुतालिका बदउनवानियों के मामलात की तेजी से समाप्त की जाएगी। यह हिदायत दी गई है कि फर्द जुर्म दाखिल होने के 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त मुकम्मल की जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की जिला और एडिशनल सेशन अदालतों को खसूसी अदालत नामजद किया है। इससे पहले मरकज ने इम्तिहानात से मुतालिक बदउनवानियों के मामलात की जल्द समाप्त का यकीन दिलाया था और वजीर आला मोहन यादव ने भी 4 शहरों में खसूसी अदालतें बनाने का ऐलान किया था। लद्दाख में 27वीं करगिल विजय दिवस की मुनासबत से 2 रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज आज दरास में हुआ। इन तकरीबात का मकसद ऑपरेशन विजय में भारत की फतेह को याद करना और 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश करना है। इस मौके पर युद्ध संस्मरण प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बहादुर फौजियों को खराज तहसीन, शहीदों के अहले खाना से मुलाकातें और जंग में शामिल फौजियों की तजुर्बा शामिल थे। कल वजीर दफा राजनाथ सिंह करगिल विजय दिवस की मरकजी तकरीबात की क्यादत करेंगे और करगिल जंगी यादगार पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे।
1: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस की तकरीब के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। शहदा की याद में तामीर किए गए इस यादगार को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। 2 रोजा तकरीबात का आगाज आज युद्ध संस्मरण गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे प्रोग्रामों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को वजीर दिफा राजनाथ सिंह मेहमान खुसूसी की हैसियत से श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करेंगे और करगिल जंग के अजीम शहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। कारगिल विजय दिवस मुल्क के बहादुर जवानों के शुजात, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करने का एक बावकार मौका है। कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: उड़ीसा का पवित्र शहर पुरी आज शाम सालाना रथ यात्रा की सबसे शानदार और अहम रसूमात में से एक सुनहरी लिबास की तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को शानदार सुनहरी लिबास और जेवरात से आरास्ता किया जाएगा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मांग की है कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को काबीना से हटाया जाए। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस रहनुमा ने यह मुतालबा भी किया कि एहतजाज के दौरान जो लोग तलबा पर मुबैना तौर पर हमले के जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही की जाए। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में मिस्र की बारब सामह को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम कर दी है।

0: भारत की 18 साल अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 2005 में जोशीना चिनप्पा ने यह कामयाबी हासिल की थी। अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सालिम से होगा। तवक्को है कि यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी है। भारतीय साहली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू और कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। आज सरकार और CJP के वक्त के दरमियान इम्तिहानात में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदाम पर तीसरे दौर की गुफ्तगू होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं जिनमें पेपर लीक और मुतल्लिका बदनुमानियों के मामलों की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्क्वाश की खवातीन की आलमी जूनियर शिप के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान आज तीसरे पहर हरारे में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. In squash, India's Anahat Singh enters women's singles final of World Junior Championships at Ontario. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And now the news in detail. The flood situation in Assam remains critical with over 1,15,000 people taking shelter in relief camps. Sibsagar, Charaideo and Jorhat are the worst affected districts. 14 more flood-related deaths have been reported, taking the state's flood death toll to 61. The Diko, Disang and Dhansiri rivers continue to flow above the danger mark, worsening the situation. Relief and rescue operations are underway, with disaster response teams and district authorities providing assistance and closely monitoring the affected areas. Prime Minister Narendra Modi today held a telephonic conversation with Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and reviewed the flood situation in the state. In a social media post, Mr. Sarma said the Prime Minister sought an update on the extent of the devastation, the progress of relief operations and the challenges being faced on the ground. He said that Prime Minister Modi assured him of every possible assistance from the central government to support the ongoing relief, rehabilitation and reconstruction efforts. Mr. Sarma also said that the people of Assam are deeply grateful to the Prime Minister for his reassurance and steadfast support during this difficult time. In Gujarat, rescue and relief operations are underway on a war footing following heavy rainfall across the state. Severe monsoon conditions continue in the state, with heavy rainfall lashing several parts of the state. Our correspondent has the details.
2: State authorities have evacuated more than 40,000 people to safer locations, while rescue teams have safely brought more than 6,000 stranded citizens to safety. Navsari, Valsad and Surat districts have seen maximum relocations. A total of 17 NDRF teams, 32 SDRF platoons and 6 army columns have been deployed across the vulnerable.

0: Women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Same 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Jandu Kumar, clinched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on host Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर मरने वालों की संख्या 61 हुई 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा अब समाचार विस्तार से असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर चराईदेव और जोरहाट हैं ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई इनमें चराईदेव में 7 शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है एक रिपोर्ट
2: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है प्रमुख नदियां दीखो दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है आपदा मोचन बल जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है
3: सीआरएफ की 32 प्लांटों और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है जलभराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

0: जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कॉकोस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी सीजेपी की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा

0: विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
1: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकेंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे News1AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर है, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज

0: बारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: در از اخبارتیس نیشنل نیوز سرویس 24/7 یکی از برنامه‌های این انجیگوت بین می‌دیم و ویکا دو آکاشوانی کارگلین وقت با نیمی بچه‌ای از نفت سانسک کسات برنامه‌ی این مزد بالتی برنامه شگسکت

0: तो से जामे में उन्हें हल्का बे मसों जो या मेहनत जी वैसे जान चीज का
1: ओए
0: से
1: बिल्कुल
0: हाजू
1: ता दे जान कुन ता
0: ओ
1: हल्का जान गुआन मतलब मेहनत में भी
0: मेहनत
1: गुंदे
0: में पिजान गुआन मी हुए के मेहनत जो मदद जुता
1: जो
0: ज्यादा
1: असल सो
0: मसों सुन मी का ज्यादा
1: मेहनत
0: असर
1: जो
0: था दे जान पुलिस
1: गब जस्ते यानी तब्दीलीन औसत नसी सक्यति या छी तब्दीली बारी जसन दो नया जस की अतिस नसी खागत जो प्रयास गत फसल होत पर गब जस्ते चिंगाता क्यों होत पर दोना गा नक्स बर्दोन यानी कि गा मुश्किलात को नताल थोत पस नसे नम जंदो से अमा चेंज पो या तब्दीली गत औसत
0: फोनो अकेल यदि तब्दीली बारे नुंगा या ताया या नुबा चिखेर बनगा या मचल खेर तब्दीली चिक दो से जु याना एलुम जरते एलुम जरबा सु दिल्ली सु जम्मू सु हा कलकत्ता सु गारी गासों से एलुम जर मगर एलुम जरो फमन ना मैल थो में जापो मैं सरमा थो में जापो एलुम जरो फमन दो एलुम मेन एलुम दो लदर बस ना पसी काका फोनो जात सिर कौम कबीली लिहाज नजर से जुलत पा मसों जो सरमा सुन से लिहाज यार जमाने यूल पसमी यार जमाने हम सही लिहाज देखा हम जाप दूसरे चौन चा लिहाज में जो याना एलुम जर से जर चीज गदाना ना दो एलुम चीज पे मत मसों जो चा जर बना एलुम जर बिन शेस पोला
1: शेस पोला
0: एलुम शेस पोल गा चीज चीज वाना जो चा चा मशेस पा ओन ना ओन से या सरमा सुन से माता जर मिजर जर चा मत्ता मसा मस पर जर चा शर्म सुनचे लिहाज में बेचा कौम कबीली लिहाज में बेचा मसों जो ना
1: बख्शीश
0: पसी या जो गई आम फलानी या आम से चिके बोमे इन आम से चिके फीन जन क्यों से नानु जल के जैसे देखा जी पो मुझे मेहमान पला इज्जत के जानता चुक मसों जो दूसरे रंग आम मुस्लिम वाला दूसरे का फोन लोग पास है अमित मसों जो
1: तो ngata la thomi hisab pe ka ju gwana yeri hisab ka chizo yeri samzo chi od ngala nadyo shese ki ngati du se sabak zerbet bzosto chi od zerna sib shogbu elum pul sabet baqi yang ati yang chi du moral value zere ngata angrezi ka don mas sab met don mas subject in men gwana du istroli ka shayat bat samet yeri samzo chi od
0: men du se mala yan espera yeri espera sahi ju ya gwana du se nam ji nga dais nais nalazes ki insan muhtaj makhad sui ka
1: बिल्कुल
0: मोहताज जरूरी
1: दरअसल
0: मसों जो काका फोने का आधा या भू अतिका मसों मोहताज जरूरी जब तक इंसान चिक चिक मोहताज मोहताज बा मतलब लेगे देखो मेन कि मतलब चल बा लपज मा दे मोहताज पर मेन मगर नंग बारे मोहताज गाना सुन अतल या तंगल पेने तंगा कर गिलो गजर बना मोहताज मसों जो गाना अतल पता सुन सुज कर गिलो सुन से फूल पता सों के आदास गाना जो ते पेने मिनसे गा दिए तरका जी का जोस्ता जी के क्या पर गोज जो मसों गाना दो सोले मुख्तार मिसाल ने बुसनी पोइना द पोए मुख्तार मसों जो द पोर जर पर गोज गा दी चीज पर दिन कर लो गोइन गा जी गोंचा क्यों मिन गा जी बुल पर क्यों मिन नी बुल पर छत से मसों जो गाना मुख्तार सोया दि मुख्तार बोचु में जमे चिक खर लुस बिन चिक चिक ला पता लुस बिन कि दु गार सों से दरबो अच्छा दुसा गा दी अमूमन टेलीफोन पे बुसनी पर गारियो चांग मसों जो गारियो ना फलान ला सना बिचाल तन संसा यहां चिक तंसा यहाँ जी गुआन जी मोहताज मसो भी मेहरबानी पिने लेगी ना ऐशो आराम सोच मेहरबानी गुआन जी उस लिहाज लुस भी मेन अच्छा देखना अमूमन जैसे मिसाल ने बुझने बोझ रहा दापोरा मैं नानी होती रहा देखना दापोर समझ चलो नानी है ना तो वाले नानी हुए मसों का यहाँ होटल निचाज दे रहे खुश इतना हुए नानी वाले चोट दिमिक जाते हैं नापुला वाले बुझने बुनाने में दोखा सुन दोखा गुआन जी हुए खर पलेन में देखने कुले कुले खाओ मिन चिक चिक पेगा
1: जू भी उन सोचने का
0: ओ
1: जोनी का
0: गुआना जू चोक गुआना चिक चिक मुख्तार मगर भी मेहरबानी का जू नंग हम चिक पे मन सुबह हम योई गुआना जू से तब्दीली दे कसमी तब्दीली नहीं होती ना पास इधर चलो जोन मत आमी मिल पा गुआना जोन तामी वार बसी मिल पा चाहे जब माना गुए वार पे मिल पा सोना मोचे का दाखपो खाने यहाँ बो भी उमर गोसित पा जुड़ लुगे मसों जैसे जो मैं दाखपो सोने कंट्रेट चिकला या स्कूल मिस्कूल गामा स्कूल से नहीं हो मसों देखा गा सरसों पता मैं वाने चिक के मुख्ताज मखर पे जो क्या पेने को रारे में जैसे नौकरी बेचे जैसे अमूमन 6,000 5,000 नौकरी उन बेच सुना दे नौकरी में बेचे ना बुझने को ना जुने जाने का शेड मसों जो वाने जो तब्दीली चाहो से ना चाहो मैं ना सगती ना बस चल सगर लते ड्रम बेल लते या सगती जान चीज एक सगती का ड्रम सुन में एक रंग अरे देखो बस पियो उधर में सालिम बाजार ना बस टेलीफोन बेच शाम ना या शिमला मिर्च खुर ओं या लो जी करेला खुर ओं या लो भिंडी खुर ओं मसों जो गुआनम ओ या गुआनम ना सके दान कति जामे गुआन दी हिसाब दी हिसाब ही तब्दीली किस्म किस्म हो जो महत से ज्यादा तब्दीली हो जो चुक कदन लाना अपो में स्पेस सके पर उजार जो
1: बख्शी जो
0: चुक कदन बार बार जर बजूंगा दिया बार बार दी के सन मुझे सन मत गुआनंगा बार बार मिले जेर सीन नरी ना सेट जो इन चुक कदन सके सो मच गा किस्म दंबा परेशानी ओ नसी सखत मचों सखत सों खाने आता चुक पदुन ने खोला खुली औलाद के खर्च मत पे क्या को सखत पदुन से ने पेने एज भी कोशिश कर जिंदे मतलब जी पदुन मन खोला लाख चिक थोप थोप थोपा ने देने लाख सुन थोप नरना लाख चिक पो लाख नहीं स्वागर

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप म्यांमार से खबरें सुनिए। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी हैं। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं, जिनमें पेपर लीक और मुतल्लिका बदउनवानियों के मामलों की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाह सिंह ओंटारियो में स्क्वैश की खवातीन की आलमी जूनियरशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बताई जाती है। वहां 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। खबरों में कहा गया है कि शिवसागर और जोरहाट जिले सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मजीद 14 अफराद के हलाक होने की खबर मिलने के बाद सैलाब से वाबस्ता वाकयात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो गई है। दीखू, दिसांग और धनसीरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सूरत हाल और बिगड़ गई है। बचाव और इमदादी काम जारी हैं। आफात से निपटने वाली टीमें और जिला हुकाम मुतासर इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब सरमा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वजीर आजम ने सैलाब की तबाहकारियों, इमदादी कामों की पेशरफ्त वगैरह के बारे में जानकारी हासिल की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने बाज़ाबादकारी, तामीर नो की कोशिशों और इमदादी कामों के लिए मरकजी सरकार की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। उधर गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद बचाव और इमदादी काम जंगी पैमाने पर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 265 तालुका में बारिश हुई है। रियासत के इमदाद से मुतालिक कमीशन ने बारिश से वाबस्ता वाकयात में 5 अफराद की जानें तल्फ होने की तस्दीक की है। खबरों के मुताबिक भारत के साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। हुक्काम ने बचाव इमदादी काम तेज कर दिए हैं और मुतासर इलाकों के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारत के मौसमियात महकमे ने आज गुजरात में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह के हालात रह सकते हैं। मौसमियात के महकमे ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, साहिली कर्नाटक, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, पंजाब, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और उत्तराखंड में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। सिक्किम के नामची जिले के फामटाम गांव में आज मिट्टी के तोदे खिसकने के बायस 2 अफराद के हलाक होने का अंदेशा है। नामची के एसएसपी ने कहा है कि लाशों को निकाला जा रहा है। 2 जख्मियों को इलाज के लिए नामची जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन मुअत्तल रहने के बाद आज से ये यात्रा शुरू हुई है। हुक्काम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके और यात्रा खुश असलूबी से जारी रह सके। यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि वो इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतों को नामजद किया है, जिनमें इम्तिहानात का पर्चा लीक होने और मुतल्लिका बदउनवानियों के मामलों की तेजी से समाप्त की जाएगी। ये हिदायत दी गई है कि फर्म क्या था। इसी दौरान मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निपटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतल्लिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मसौदे को मंजूर किया गया। जराये ने हमारे नामनिगार को बताया कि उम्मीद है कि मुजवदा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाए। इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने 47 अफसरान

लता मंगेशकर की आवाज में नागिन फिल्म से ये नगमा आपने सुना। अब सुनिए मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों को। फिल्म का नाम है बैजू बावरा।

इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको कश्मीरी लोकगीत सुनवा रहे हैं।

Oh, my God.

सुबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज आपने कश्मीरी लोकगीत सुने। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। अब सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे।

0: सोनू निगम के साथ साधना सरगम को आपने सुना, फिल्म थी हम तुम। अब सुनिए उदित नारायण की आवाज में हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म का नाम है हमराज।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले का।

सुझाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाए।

0: सांस थी, धड़कन अधूरी थी।
1: सोनू निगम और सुनिधि चौहान, आमिर खान और काजोल की आवाजें अभी आपने फना फिल्म में सुनी। प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू अलका याग्निक को सुनिए फिल्म है खुददार।

कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाजों में ये नगमा था कभी खुशी कभी गम फिल्म से। अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम है आंदोलन।

0: अब सुनिए आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश उदित नारायण और मधुश्री की आवाजों में। फिल्म का नाम है किसना।
1: हम

0: उदित नारायण और मधुश्री की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे किसना फिल्म से ये नगमा। इसके साथ ही फिल्मी नगमों का आज का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुद्दमार से खबरें सुनिए। भारत और इसराइल के दरमियान मुजवजा आजाद तजारती माहदे के बारे में गुफ्तगू का दूसरा दौर खत्म।

आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी हैं। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से यात्रा मुअत्तल थी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्क्वैश की खवातीन की आलमी जूनियर शिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और इसराइल के दरमियान मुजवजा आजादाना तजारती समझौते के बारे में गुफ्तगू का दूसरा दौर खत्म हो गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान इस महीने की 20 से 23 तारीख तक बातचीत हुई थी और फरीकैन ने समझौते के तमाम पहलुओं के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया और जामे मुतवाजिन और दोनों मुल्कों के लिए सूदमंद आजादाना तजारती समझौते के सिलसिले में इस बातचीत को आगे बढ़ाया। तजारत और सनअत की वजारत ने बताया है कि यह तबादला तामीरी रहा और मजीद आगे बढ़ने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल विकसित दरक्षा गांव प्रोग्राम 2026 के बारे में मुल्क के नौजवानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। मुल्क के हर रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 400 से ज्यादा नौजवान जनाब मोदी से गुफ्तगू करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने साबिक स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को आज उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट, साबिक अरकान पार्लियामेंट और दूसरी शख्सियात ने सोमनाथ चटर्जी को गुलहाय अकीदत नजर किए। नायब सदर सीबी राधाकृष्णन ने आज कहा कि ऐवान में गुजारा जाने वाला हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर लम्हा जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में राज्यसभा के नौ मुंतखब और नामजद अरकान के लिए मुनाकिदा दो रोजा तारुफी व तरबियती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहस मुबाहसा हमेशा किसी नतीजे और फैसले तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेहतमंद और तामीरी बहस मुबाहसा जमहूरियत को मजबूत करता है जबकि बाहमी ताउन मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करता है। उन्होंने अरकान से अपील की कि बावानी मुबाहसों, ऐवान के जाबतों के एहतराम और वक्फे सवाल और वक्फे सिफर का मुअस्सर इस्तेमाल करके ऐवान की आला अकदार और रिवायात को बरकरार रखें। इसी दौरान मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निपटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मुसवदे को मंजूरी दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मुसवदे को मंजूर किया गया। जराये ने हमारे नामनिगार को बताया कि उम्मीद है कि मुजवदा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने 47 अफसरान को बर्खास्त कर दिया है। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये इकदाम NTA में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाने का एक हिस्सा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो नीट UG पेपर लीक मामले पर मौजूदा एहतजाज के बारे में सोशल मीडिया हैंडल्स की लगातार निगरानी कर रही है। DCP सेंट्रल रोहित राज बीर सिंह ने बताया कि 400 ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स की निशानदेही की गई है और उन्हें ब्लॉक किया गया है क्योंकि वो AI के जरिए तैयार करदा और दूसरी मनगढ़ंत खबरें फैला रहे थे। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बताई जाती है। वहां 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। खबरों में कहा गया है कि शिवसागर और जोरहाट जिले सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मजीद 14 अफराद के हलाक होने की खबर मिलने के बाद सैलाब से वाबस्ता वाकयात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो गई है। धेकू, दिसांग और धनसिरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं जिससे सूरत हाल और बिगड़ गई है। बचाव और इमदादी काम जारी हैं। आफात से निपटने वाली टीमें और जिला हुक्काम मुतासर इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि वजीर आजम ने सैलाब की तबाहकारियों, इमदादी कामों की पेशरफ्त वगैरह के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने बाज़ाबादकारी, तामीर नौ की कोशिशों और इमदादी कामों के लिए मरकजी सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। उधर गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद बचाव और इमदादी काम जंगी पैमाने पर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 265 तालुका में बारिश हुई है। रियासत के इमदाद से मुतालिक कमिश्नर ने बारिश से वाबस्ता वाकयात में 5 अफराद की जान तलफ होने की तस्दीक की है। खबरों के मुताबिक भारत के

0: ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की जिला और एडिशनल सेशन अदालतों को खसूसी अदालत नामजद किया है। इससे पहले मरकज ने इम्तहानात से मुतालिक बदउनवानियों के मामलात की जल्द समाअत का यकीन दिलाया था और वजीर आला मोहन यादव ने भी 4 शहरों में खसूसी अदालतें बनाने का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन मुअत्तर रहने के बाद आज से ये यात्रा शुरू हुई है। हुक्काम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके और यात्रा खुश असलूबी से जारी रह सके। यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि वो इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। ओडिशा का पवित्र शहर पुरी आज शाम सालाना रथ यात्रा की सबसे शानदार और अहम रसूमात में से एक सुनहरी लिबास की तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को शानदार सुनहरी लिबास और जेवरात से आरास्ता किया जाएगा। मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंदों के ग्रैंड रोड पर जमा होने की तवक्को है ताकि वो इन मुकद्दस देवी देवताओं की रूहानी शान शौकत का रूह परवर और पुरशी को दीदार कर सकें। हमारे नामनिगार ने कहा है कि इस अजीम मजहबी तकरीब के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। पवित्र शहर पूरी इस वक्त अकीदत, रूहानियत और जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस की मुनासिबत से 2 रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज आज द्रास में हुआ। इन तकरीबात का मकसद ऑपरेशन विजय में भारत की फतह को याद करना और 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश करना है। इस मौके पर युद्ध संस्मारण प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बहादुर फौजियों को खिराज तहसीन, शहीदों के अहलखाना से मुलाकातें और जंग में शामिल साबिक फौजियों के तजर्बा शामिल थे। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह करगिल विजय दिवस की मरकजी तकरीब की क्यादत करेंगे और करगिल जंगी यादगार पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ऐसे में दरास में वाकई करगिल जंगी यादगार एक शानदार और पुरशिको मंजर पेश कर रहा है। भारत की स्क्वाश खिलाड़ी अनाहा सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में मिस्र की खिलाड़ी को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। भारत की 18 साल अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 2005 में जोशना चिनप्पा ने यह कामयाबी हासिल की थी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और इसराइल के दरमियान मुजवजा आजादाना तिजारती माहदे के बारे में गुफ्तगू का दूसरा दौर खत्म हो गया है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी हैं। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात। शाम के 5 बजने को है, दूसरी मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। रात 9:15 पर हम एक मरतबा तीसरी मजलिस में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: سامعین محترم، ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاش وانی کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم وے پر ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں۔ شام کے 5 بجے ہیں، اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہماری نشریات مسلسل انہی میٹروں پر سن سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میری میو ترک گن شش بینا اجبی کیلو ہرس دونوں میری میو استوں چگنا غب گن شش بینا اجبی کیلو ہرس۔ ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز، دونوں موبائل ایپ نیوز اون اے آئی آر ریڈیو۔

0: nge rewa chon ni ja guni demo sante yo do tingma yong che sene jal da we chani chu cho du dang phe de ka yang digrim soma ji khur te jalen te te chuk pa kongs pa jala ja jule san mo de le
1: der serpente zanskari program plang ren chi gut pin medium ve vi ke du akashwani kargilin वक्स पुशामी वजह त्रुक चेंदो कसता आकाशवाणी देखली के ना हिंदी ना अंग्रेजी खबरों रिलेवे रिलेव लगे इर बाजार
2: शर्मा कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
3: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
2: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
4: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजीपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
4: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
2: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को

0: सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
1: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh today held the third round of discussion with the CJP delegation, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Later, in a joint press conference with the CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said during the meeting the government agreed to the demands of the CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: CJP's chief spokesperson Sarav Das announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. Earlier today, Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Pradhan said he was pained by the prevailing situation during the past 10 days following students' protest. He said it was not a matter of prestige for him. He said he had taken into account the situation at Jantar Mantar in New Delhi as well as the situation across the country. Mr. Pradhan said the service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched a sharp attack on the Congress and the Samajwadi Party, saying that the paper leak mafia is the legacy of these very parties. He asserted that there are only

0: कर नजर जक्छ सिर्फ एक घंटा जक्छ एक घंटे एरिया पुनः फिंच हल्का छू चिके दो छुपराब चिता से ना ते हिंडा चिका साफ रह दरपाल थी से या जी शी थी से आधे का थर थी चुसे ना
1: पक्षी लक्का सब जो माना अर्धमोमोस चाना दक्षा गति मिमोस कुंडला गाचुली गतेस या कहनी से अनुक जवांगोस कल जजस नारिग ना दो गतेस पूरी मतलब वक्त मुख्ताशिक जरे या एक घंटे जरे या
0: मैं साम चिता चिंज देंगे तेज 20 लीटर छुएंग 1200 ग्राम एक एक केजी 200 ग्राम आदि पाउडर पतांचा आदि समान पतांचा दो ना सिर्फ एक घंटा स्नाब से जाग आती आधा गलती में बचा कि एक दिन फांस से जागे यारी रंग पार दे मौन जिन्स दो आता आज सोरे कि एक एक घंटा जाग पने ची रंग चीज उक्षिन हाजरे दो ऑलरेडी खो आधा घंटे जाग पना खे नंगोस पे छखानी चीज उन सों से आदि प्रिजर्व लुशिन सु दो ना दी के एम एस पोस्ट आदि युद्ध खान जैसे कि आती यहाँ जरासी में उचिन सुनसे सुनसे जरासी में उचिन गाज बसे आती चुली जिक चुचिन आदो कम जिक चुचिन पे
1: बख्शे जो छाना अंगाती हॉर्टिकल्चर या नुक या फ्रमाचिक सिक्किम मना मोमो जो छाना दक्षा अंगाती मेमोस कुनला खुसूस अंगाती स्टार्जिया के बद बखान कुनला गसुक गसुक या सिक्किम रिगों से जो छाना अंगाती हॉर्टिकल्चर इसी त्यानो ना फ्रमाचिक अंगाती मेमोस सामान जरे टूल किट जरे या मिसाल दक्षा सोलर जरे या अंगाती पोलर ट्रेलर जरे दक्षा सी अंगाती सोमा चीची मटेरियल दिंगाती मेमोस कुनी हंती त्यानो ना चल बयान चाचन दिस कोला चिकास
0: बख्शे सरिया छाना जैसा कि यारे सवाल पुटिस अंगाती हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से गाती फार्मर उनला या गाती सहियत बाखान उनला गच उस मदद ची गवर्नमेंट स्तान दुख जरे हाँ छना अदो से रिलेटेड सेंटर स्कीम है उनची यार अंदर ना MIDH इंच मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर छना अदो दरे बिल्कुल ऑनलाइन सोच सरिया पहला चलो गाता बुलिक मीना बरला बुलिक सुफेज रिचे दिया दे चोक्स रिचे जरो गया दरे बिल्कुल यार इस एप्लीकेशन पो गाती पब्लिक यहाँ नोटिस आये उनसी यार अंदर ना 1.5 महीने पहला नोटिस आता गाती दी रेडियो स्टेशन निकना यहाँ आती न्यूज पेपर यहाँ आती पब्लिक यहाँ जैसे कि सोशल मीडिया फेसबुक जेरे इंस्टाग्राम जेरे अदो निकांग नोटिस पो अपलोड बसे पूरा पब्लिक यहाँ फैलाई छा चुस इनके हॉर्टिकल्चर की तरफ से MIDH अंडर यहाँ ची चीज गच ऑफ ची शिक नता थोपचिन सुख गच ऑफ इमदाद री थोपचिन सुख गाज जैसे की चुली सगियत बदना या लूद से रिलेटेड ची बात ना अदोन गांव में डिटेल्स पब्लिक यहाँ यू से दर एप्लीकेशन आता से ऑनलाइन बेन उत्सर है बिल्कुल छना आदेश को बुलिक जनगर तो सबसे पहला आता जैसे की चुली कुशु में इलाका इन गति कारगिल छना आदो से रिलेटेड जैसे चुली कुशुंग आतांस जैसे दरे चुली हो दिया चुली सीजन सोंग कल चुली सीजन छना योत्खानी शेरपा चुली गांव मांग आते इकट्ठे फाप से ना ट्रक चंकले बाहर ला शेरपा चुली गांव मांग कल बंगियन ममेद छना आदे फिला आदो अगर का तुम आते जाक खोरा जागना का तो आदो उस काम शुक पर गोस काम शुक पर जैसे की एरेस हिंडाक चिकताना हलूंग चिटूले बार सीसा एरेस अगर का तो दिरिंग अगर फीतो का काम शुक पता से होत निमास काम शुक पता से होत ना का तो हुनमे चिके छरपे गोना आदो खराब छेन दुख सरया पर से जैसे कि यारे हिंडक पिक नोर बलान ची गया बी खिलेपचाद ना या कीड़ा मकोड़े खिलेपचाद ना दो सा यारी अदे चीज को खराब बसे तांचिन छना अदुन चाहे बेफिला यती हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस पैक हाउस जरिन चिक हिंडक अगेन पिक गिलारूम चीज उक्षिक चौतान चिन सरे ताकि अदा शीशा विशा तां से एग्जॉस्ट फैन तां से बिल्कुल पत्थर उन साफ जग से गतिज अगर चोखा ने ठीक बसे चो ना कर तो अदे गति अदे चुली या इन्ना कुशु इन्ना या गति मुलाक उचिन रुगुनी फिला से ते जग पंगे चिन पागा में उचिन यगा जो चीज शायद कम शुक्पा आराम बस चजबना आदि हम पूरा साइड चीक पूरा बारबाने उचिन यार 30 फुट बाई 15 फुट ना चीचो ना 30 फुट पूरा शीशा छाना का तो आदि दोनों थोड़ी फेत पब्लिक यहाँ दिन उचिन नीमा जुक्सा से शीट वीट ट्रांसपेरेंट शीट पुता से छाना आदि अति आदि चुली साफ सुथरा बसे स्कामशी न पाया पहला आती चीज पिंजे बना आती जैसे कि ब्रख सगे का स्काम शुक पत पिन नोर जुग से या छरपा वरपा लालुंग लुंग चिटू लगाती ससु प्यंग देना चुलीन गंदा छात पिन छना आधुनिक बचे भी फिला गवर्नमेंट दी पोखो मुहैया बसिन छुपाया छना दी चीज पोखो आदि चीज पुचोचा देखना आधे बिल चिक एस्टिमेशन ची बसे एप्लीकेशन पर नंबर सबमिट बना खो इन में आधे देनी 50% पोखो थोपचिन जैसे कि 4 लाख खो आधे नंग पुचवास हो से ना 2 लाख पोखो खो अकाउंट जैसे कि दरे गति लद्दाख ऑर्गेनिक चोसिन जरे गुंदा एग्रीकल्चर नोटिस पहला ऑर्गेनिक इन इन जरे पिंदे छना सरकारी लूट जरे नकपो लूट करपो लूट जरे गांव बंद बस छना अदून बंद बना यहाँ ची शिर जैसे कि दरे अमूमन पुस नोर जाक पमेत अजियत छा पुलिक या मी वी ना मी मेत खानूनीस या सख्यात पुब्लिक में मेत नोर पुखी मिक्ची जगत जरे छना अदून ही फिलहाल लूट चे खड्डे दो हजार सिंह वर्मी कंपोज यूनिट जरिन चिक आदे खड्डांग आते जैसे कि गति गतांग सक इंसान इन माना किचन पे ना वेस्ट चिन भी है पक्का बाकी गति जैसे कि जिंग चिकनी शो या चंगमा चिकनी शो आधुनिक लोमा लोमा बाप से नहीं होगा यदि लोमा स्टोन ललिप बाप से

0: ना चोला ना गंदगी गद्दा भी है दिया ठूली ट्रे भी है दिया बोरी वोरी भी है ना तीचा बोरा छना अदोन तांसे आतेस आधे आंडी कंपोज बसे दोन वर्मी वर, देन वाम जरिंच आर दो वाम जरिंच स्त्रिंज हो चिन यारा सगा पता हो चिन अदो छना अदो जगह चिना या ना ती केवी के गना या सूस पहला आधे लुत पुचवा ना आधे लगना खों से आधे आम फुट ताना अदो बिल्कुल यारा साफ लुच चो से ता चिन खोस अदो ना ती जिंग उल्ला या छा सुन लता ना मना लिया मो पैदावार से चिन सर दो मेन मा यारे ध्यान चीजें मैकेनाइजेशन आती जैसे कि पावर टेलर आती डिपार्टमेंट ला पावर टेलर जरे या छुपिंग मशीनरी जरे अदोन योचिन अदोन यारा गवर्नमेंट इस 50% सब्सिडी के ताचिन जैसे कि यार इस मार्केट आना पावर टेलर सिखो दे मशीन पो छे छुए मशीन पो इन पे छाना अदो खो ना का तो जरे यार 40,000 लिया 60,000 ला थोपना 40,000 ला थोपना का तो आधे 20% पो खो आधे बिल एप्लीकेशन पो ने वो बिल पो सबमिट बना 50% पो यारा यहाँ लोग से थोप चिन सुपया ध्यान चोसलायंग आती जैसे कि आती एरिया ग्रांगमो इलाका इन छाना ग्रांगमो इलाके आता बुली देन स्टोन ओन सीजन पर कम यू दे आदि फिला आदो जैसे कि स्टोन ओन लाता दिन सब्जी वब्जी तब चिन्ना या बुली अदोन प्रोटेक्ट बसे चक चिन्ना आता ट्यूबुलर स्ट्रक्चर चिता चिन सर सोलर चिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पो खुआ पेनेस कामर गुशा 27,600 कामर गुशा खुआ आदि चक्स गोल चल चक्स पुना प्लास्टिक उन सख्त आचिन रिकेप पुना बिल्कुल 100% पेने यारा यंग लोग सोचें छाना आदि चीज को बिल्कुल यारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो बचो सुन दे थोबा थोप दे पूरा फ्री थोप दे छाना दी चीज उन हॉर्टिकल्चर इस गति फार्मर उन लता चिन बसर है
1: सर टूल किट जर इन चीज गति की ध्यान गति कसे जरे या आरा जरे दे जा दे जा चंग चंग थोप चेन सने में
0: छाना अदो हम थोप चीन अदो ता सीजन ही पहले का गते स्ना बसे दुख से अदो डिपार्टमेंट ले बना बुलीक पता बसे अदो लेन जा जैसे टूल किट गति गति जैसे के चुलिल चंग मायो या कुशुल चंग मायो गते जसो आता पोस नाम ता जैसे कि कश्मीर लताना खाचुल लताना का तो खाचुली जैसे कि चुली बागों का छोड़ दे मोरियो सुन से बिल्कुल टाइमिक असगोरे पीद रन मनंग असगोर बरगोशर नसगोरे स्टोन रन मना अगर कुशी पिछले साल कुशु दी साल कुशुन दे स्टिंजो सुन फाप से बिल्कुल चांगमी योग में लोमान गांव साइड लता से बिल्कुल साफ बसे छखानी यलदागुन बिल्कुल चाते फांसे जगह दे छना आदि फिला आरी वारी ऊंची या डवा दे ऊंचिन दे गोर भी डवा दे ऊंचिन या कसका ऊंचिन अदोन गांगमा ऊंचिन पसर अगर सु इंटरेस्ट का तो योजना का तो अदोन स्ना बसे टाइम पो जैसे कि मार्च अप्रैल उन्यांग अदे सीजन ऊंचिन अदे तना बुलिक स्ना बस पता बसे डिपार्टमेंट लयो से खबर लेने यो तमे तजरे अदो पता बसे दे न बना सगत होपचिन पसर
1: पक्षी जो लेखत सब मना अर्धमो सगति रल्टन इलाका कुने जो दसा हुसुदन गति हरदास जरे या गति हुंदुरमान जरे या शिलिक जरे योना गति दुली आइटम
0: इंडिया चुली कुशु छाखानी फेमस बाकी एरिया कम जैसे की अदुन बसे ज्यादा छाचिना पाया छाना अदुन से बसे स्टाबियोर बसे चकचा मन जरूरी जैसे कि आती देर स्टाबियोर बसे जगना का तो आधे चीजों साफ लुचिना पे आता प्रोटेक्ट लुचिन आगे के लिए छाना आधे फिलहाल आता जैसे कि आती कुशु खुरिया जरना का तो कुशियां कॉर्डिंग मौत जरिन छिक स्त्रीन ची उत्पिन पहला जैसे कि आदो आते मन वन ता से कंट्रोल माचा उत्पिन दरे अगर का तुम आते आदो ऑर्गेनिक अगर आदो कंट्रोल बने जैसे कि आते डिपार्टमेंट इसम पहला दो साल तीन साल पहला दिन नहीं बस पिन दे कॉर्डिंग मौत मैनेजमेंट का यंग स्कीम चिस्ट उत्पिन जिसमें खुआ लालटेन पुथोबिन जैसे कि लाइट ट्रेप जरिन चोचिन सोलर का डुल भी दो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का डुल भी दो मिन मा दे बोरा स्क्रीचान दे ट्रेनिंग प्रूनिंग बसे अदोन ताब्योर बसे जगचा दो मिन मा सैनिटेशन पो ख्याल जगचा सर सैनिटेशन पो ख्याल जर बना का तो साफ सफाई बिल्कुल गा जैसे कि आते बाग चीज रे माने छो बाग चीज रे नयोद मेत पना जैसे कि चांगमा सुमरिक या रे रे फेरे में नयोद मेत पना आदिल चांगमी इरित गिरित साफ जगचा बिल्कुल लोमा ओमा माँ बाप छुपा दो मिन मा जैसे कि आते गख पे गंदान गामा खेरे नतिल चामे के तमाद अदोन स्त्री नुरियों से रुगुन ला अदोन खोंस छांस वांस जो से देन नजाक चिन सुपा छना अदोन ला साब री बसे जाक चाम चिंग आता आदे कना चुली कुशु बिंग चादना आदे कना फायदा थोप चादना अदो कुलिया आता बड़ा ही छिन छिन जैसे की अदो बखन उन जैसे की आता जैसे दरे कर की छू जरे हर दस उन जरे खची किस अदो अपनाई बस इतना का तो खोंस जे रिंदो पहला आता दस के जी खराब बिंग मत पिनना दरे अदो कम सो से पांच या छह के जी का लिप से दो खराब क्वांटिटी छना कम सो सिंचो लेकिन आता अदो कम मशे

0: देखे ना दू चौक बेन गाची आगे सोसे सोसे धरे ना से लेफ जिन छी यहाँ
1: अच्छा
0: देख हतुई का कलस्टर दानियो जो कलस्टर फाट जे छेन जरे देन को देन उल दानियो दू माना गातंग गंगमी वुमेन गंगमी बार माना बार ला इन पाया ता मिसाल यांग कौन
1: अच्छा
0: छी यांग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जिरेश
1: अच्छा
0: यो देन उ तने पेने गामा देन उल जोचिन से लेफ जरे से ले भी अंडर ओचिन सु जो एसजी गंगमी पेने छाना माना लाखों करोड़ दे पेने यो
1: मर्सिस
0: और दे पेनी का गसुगा में देखना मिसाल गाते गंगमी बार ला फैक्ट्री फेनांगिन छ ओ
1: कसा
0: गवर्नमेंट इज मन गाता गति खुशी के तौर से पजे पेनी सा ओ
1: मर्सिस
0: खिंता हा गसुगा न्यान लास बोस गसुगा न्यान खिंतेस फैक्ट्री फेस खिंतेस गंगमी बार ला फैक्ट्री फेस गंगमी बार ला गसुगा लास डुलना
1: लास
0: डुल छिल
1: पुस्टुल
0: जरे
1: जे
0: लास
1: लास
0: पुस्टुल जरे ओ
1: मर्सिस
0: मगर यंग माना यंग चीका दे माने मदुक जरे ने पजे रे
1: कसा
0: माना
1: मर्सिस
0: दुना तर गला सों दे जो
1: मर्सिस
0: ओ दरान छक पंग गाता माना यंग ची दे जिक दुक पबा चीक माना मिसाल रंसो पेनी गते रंसो लाशिक बसे योद न चीक बना गाता फ्रुबाज भी शैतानांग माने इतर छे छे दाना गाता ने नु पजुया
1: मर्सिस
0: दो सों से दरे गति टेस जी बुलाग जरे गा टेस जी बुलाग इस तरह तंग जो टेस जी बुलाग गे गचा दरेल दानियो एसी जी दरे अनिल लहागो सों से जो 150 150 के गचा थाल से जो एसी जी
1: मर्सिस
0: दिचिक 64 सोमा माने यंग 15 15 एसी जी गचा यल दान से सोमा
1: मर्सिस
0: ओ दरे ना हगो सों सिन सुंगा ती अनि लास ना लना लोन इन लो गोरमे नि छि बचिन लो जिन छिंगा चांग खाचि गिस मेने दे मना दिनि बस जोस बिन
1: यरा
0: पजिया
1: गचुगा संबे योंस यरा पहला दिनो गेरेस लसुन गोजुक बचना गचुक शयना संबा सबत ओ पहला यरा गचुक फायदे योंस फनखे योंस देतना छनो मोनिस गचुक शिबा सचुल बतरे चामशिक यरगिया जोंस दिलस पियानो
0: ngacha mana pehla na ngacha samba ya gorme ni group chi cho chi khan chi ochin lo jren chi sa ja fer
1: Merci.
0: look tang ans pa ju ya ne na ngacha sa join ba ju ya mana group
1: Merci.
0: chi cho jong chi nga tang asin mun dur se group chi che cham chi da feda chen do ga chuk chi chen do khu ga chu ga nga ta student du jere ngacha group chi cho ju
1: Merci.
0: de na ngacha group chi cho se mana ek sal chi chak pig na mana ngacha khu re wali fan chi mana khash ba se mos pa ya ta de
1: Merci.
0: sana en me sitab met pin so
1: Merci.
0: o da re sitab yong se mana pura district manager mana de na ngati bula लग माने जर्मन गंग मा यों से ने एस्टिंग अचा रिवालिंग फन फुतास रिवालिंग फन मुता बना अचा गति एस जी लेस ना ललता जुया
1: मर्सिस
0: चाम सिंह अतांगे ने दो जरा 25000 रुपए फीस क्यों 25000
1: मर्सिस
0: रुपए फीस के दुकान छ ता सक्से दुकान छ
1: कसा
0: दुकान छ ता से दे दुकान पिका माने डूले गता एस जी अब मो सख क्यों म सों या देना सामान छ के बाजार ला क्यों म छेन दियो जो बेन गचा देरे माने गचे दुकान के ना थाले यांग दरे यांग गुंचा क्यों से सों म दे चोले
1: मर्सिस
0: बाहेला ता ए चो से ई ना
1: गोमा
0: केरे
1: एतान
0: आने
1: ग्रुप
0: पिन
1: चाम चिल्दान दारे ग्रुप चाम चिल्दान यो
0: ओदे चना गचा ग्रुप या पिन ओदे चना 15 ग्रुप जो गति
1: मर्सिस
0: माने टेजी बुलागे 15 मिनट में पिन
1: कसा
0: दरे देना ट्रेस्पोनेंस ट्रेस्पोने 15 ग्रुप यत पिन टेजी बुला खुरियन यत पिन 70 ग्रुप चिक ओ
1: मर्सिस
0: दरे अनिल लछुते इन इजलास बात हों से इन लोग मई छान
1: फनके
0: थों
1: यों
0: से
1: मत हो
0: फनके यो
1: मना
0: मत हो मना गचा ग्रुप में चुगा जरेन चिक माने खंतस एना ना दरे ग्रुप चुन चिक माना दरे गचा 150 ग्रुप का दरे 2026 है 150 के संसद ओ
1: मर्सिस
0: सोसियो जो दरे ना तेने ला छुते इन छक्सिक दी बोर मेनी देन दा फेनी ने किसी की मन करना था फायदा लेन
1: Yeah, na
0: मरगोशिन
1: yantes kharik bo ga tsuxla shika fan ke fin king ati sakhat pika na nga tes yongo kyong ata yante lakhla sika na ga tsuga yong du ga matlab ya dukan ta za hati ta se de ka yong du ga tsuk shik yare ta
0: du
1: fan
0: na
1: ke
0: ran
1: yong
0: so se den di gyo ya misal agriculture group chona khwin gana chas pu tob jare nu de
1: Merci.
0: gyen du me ju dumet pa yaren tes ya ka yara ka den ni kana misal yara telari kana yona telari hati tong yong ma ches na hati ya balang jo urgen kana yong ma ches na urgen tong urgen ya oma yong ma omi kana yanta oma yong ma ches na omi kana feda yong ma ches na oma tong yang khoi odzok shim yong ma pjo suz nor jak cha suz balang jang suz si khoshi ke pjo las bo
1: Acha,
0: o
1: merci.
0: ban ke ga khachi ge ya telar antan su yot khachi ge na netting a ben yot khachi ge na dukan antan zot khachi ge telar mana dare yarang mana yarang slip na thongcha ju ngati te jibula ga man dia enarle me grupe no bomo khachi man age sonse mana lakhun karo dung de lakpati sonse yot
1: Merci.
0: o lakpati ngati te jibula khurian cha lakpati de 15 na far sonse yot o
1: Kasa,
0: lak man ko mai bacha de gana ga ese ji de nik penika
1: Acha, zi lak mai
0: o
1: bacha.
0: ze min sale sale
1: Sali
0: o
1: lak.
0: sale sale sale
1: Merci, merci.
0: sale khu man lakpati certificate thop sin
1: Ina,
0: o de
1: kasa.
0: sab ngati de re do 5 ta cha 2022 cha na 22 के 26 छना गता 5 साल से सुंदे या 5
1: मर्सिस
0: साल या न अंडर ला लाखपति खोना से 20 नफर सों से यो ना पोटेंशियल जरे खो या सक्सिक दून बचे को मई काम रे बखान खोरंग माना 40 47 چیر جو
1: مرسیس تا ندی گورمه نیدیا سگی منانا دو چخشان یوم تاکی ملا میشه سکنی لخلاز

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब हैं। ऐसा में किला समात करें। प्रेसिडेंट बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ब्यामाथंग करगिल लद्दाख के किला के मुताबिक बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर शोबा सेहत इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल की जानिब से आंखों के इलाज के लिए बाकरिया कम्प्लेक्स ब्यामाथंग में एक टीम का इनेकाद किया जा रहा है। इस मुफ्त कैंप में 26 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक सिर्फ मोतियाबिन यानी कैट्रेक्ट के मरीजों का मुआयना किया जाएगा और जिन मरीजों में मोतियाबिन की तशखीस होगी और ऑपरेशन के लिए मौजून हों उनका मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। मजीद 29 और 30 जुलाई 2026 को चश्मे के नंबर, बच्चों की बीनाई के मसाइल, आंखों की सुर्खी, खारिश, पानी आने और आंखों की दिगर तमाम बीमारियों का मुआयना किया जाएगा। लिहाजा जिन अफराद को मोतियाबिन की शिकायत है या इन्हें पहले मोतियाबिन के ऑपरेशन का मशवरा दिया जा चुका है वो 26 से 28 जुलाई के दौरान जरूर तशरीफ लाएं, जबकि दिगर तमाम मरीज 29 जुलाई से कैंप से इस्तिफादा हासिल करें। वाज़ह रहे कि 26 से 28 जुलाई तक मोतियाबिन के मरीजों के अलावा किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए प्रेसिडेंट बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल के दफ्तर से राबिता करें। और एक इतला समात करें। प्रिंसिपल पीएम श्री जवाहर नव विद्यालय खुम्बतंग करगिल के एक इतला के मुताबिक जवाहर नव विद्यालय खुम्बतंग करगिल में साल 2027 के लिए दाखिला शुरू हो चुका है, लिहाजा तमाम तालिब इल्म और वालिदैन को मुतला किया जाता है कि वो उनके वेबसाइट https://navvidya.gov.in पर जाकर इस महीने की 31 तारीख तक सिलेक्शन टेस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मजीद तालिब इल्म की तारीख पैदाइश 1/5/2015 से 31/7/2017 के दरमियान होना और पांचवी जमात में जेर तालीम होना लाजमी है। मजीद तफसीलात के लिए प्रिंसिपल्स पीएम श्री जवाहर नव विद्यालय खुम्बतंग करगिल के दफ्तर से राबिता करें। इतला खत्म हुई। फाइल

0: तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इम्तिहानी अमल में शफाफियत लाने के लिए एक इस्लाही कदम के तौर 47 अहलकारों को बरतरफ कर दिया है। उनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि मरकजी काबीना ने पेपर लीक मामलात और इम्तिहानी अमल में लापरवाही की सूरत में कसूरवारों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत कायम करने के मसौदे को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सपहर 4:30 बजे विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के शिरका के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादला ख्याल करेंगे। इस दौरान मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 400 से ज़ायद नौजवान वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करेंगे। वाज़ह रहे कि विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 4 जून से 30 जून तक मुनाकद किया गया। इस प्रोग्राम के तहत शिरका ने मुकामी लोगों के साथ छाना बशाना रहकर मरकजी फ्लैगशिप प्रोग्रामों के तहत सरगर्मियां अमलाई और उनके बारे में बेदारी पैदा की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तालीम सिर्फ किताबों और इम्तिहानी हॉल्स तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये खेल के मैदानों ने समाज के हर एक पहलू तक पहुंचकर तर्ज जिंदगी का एक हिस्सा बननी चाहिए। SKCC श्रीनगर से आज डल के किनारे पर रीडिंग मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि कुतुबीनी हमारे ख्यालात को तकवियत बख्शती है, जबकि दौड़ने से हमारे जिस्म मजबूत हो जाते हैं और ये दोनों मिलकर समाज को मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो 3 अहम अहद लें, जिनमें रोजाना कुतुबीनी करना, रोजमर्रा की जिंदगी में माहौलियत दोस्त इकदाम करना और मैराथन के जज्बे को समाज में मस्बत तब्दीली लाने के लिए बर्रुए कार लाना शामिल।
2: मुझे ध्यान है कि जब इस नींव की कल्पना की गई थी तब उसके केंद्र में एक दूरदर्शी विचार था कि शिक्षा केवल पुस्तकों के पन्नों और परीक्षा के कक्षों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ना चाहिए। ये रीडिंग मैराथन उसी सोच का एक उदाहरण है। चिनार बुक फेस्टिवल के रीडिंग मैराथन का संदेश हरित भविष्य के लिए दौड़। इस आदर्श वाक्य को एक जीवन दृष्टि के रूप में देखना चाहिए। ये आदर्श वाक्य हमें याद दिलाता है जिस प्रकार अच्छे विचारों का निर्माण निरंतर अध्ययन से होता है, उसी प्रकार धरती का संरक्षण भी निरंतर प्रयासों से ही संभव हो पाता है। ज्ञान तथा पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है, अनुशासन भी उसके लिए जरूरी है, समाज का निरंतर सामूहिक सहयोग भी इसके लिए मिलना चाहिए। यही निरंतरता की शक्ति है और यही इस मैराथन का वास्तविक संदेश भी है।
1: इस मौके पर LG ने कारगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए कारगिल जंग लड़ने वाले बहादुर फौजियों की दिलेरी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि नौजवान फौजियों के इस जज्बे से तरगीब हासिल करके अपने अंदर नज्म और जब्त कायदाना सलाहियतें और नेशन फर्स्ट रवैया इख्तियार करके एक नई तारीख रकम करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह का वालेहाना इस्तकबाल किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में मुनाकद होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर IFFJK से फिल्म इंडस्ट्री और जम्मू कश्मीर के दरमियान नई शराकत दारी का आगाज होगा। वजीर आला ने कल श्रीनगर में IFFJK के इनेकाद से पहले मुनाकदा तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फिल्म फेस्टिवल मुनाकद करने से वादी के बासलाहियत नौजवान फनकारों के लिए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म साजों के लिए मौजूद पॉलिसी तरतीब देने पर संजीदगी से काम कर रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने राबता दफ्तर में अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात करके तरक्याती और अवामी बहबूद से मुतलिक मसाइल सुने। अरकान असम्बली आगा सईद मुंतजर महदी, विजय कुमार और राजीव कुमार समेत दीगर कई वफूद और शख्सियात ने मुख्तलिफ नवीयत के मामलात वजीर आला की नोटिस में लाए। बाद में वजीर आला ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल का तरजीही बुनियादों पर बरवक्त अजाला किया जाएगा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 6 रोज की मौतली के बाद आज दोबारा बहाल हो गई। आज शाम 5 बजे तक मजीद 3,974 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी और यूं यात्रा शुरू होने से अब तक मजमुई तौर 3,95,000 यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इधर आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 6,269 यात्रियों पर मुश्तमिल 18वां काफिला वादी के लिए रवाना हुआ। वाजे रहे खराब मौसम, शदीद बारिश और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद रहने के बायस यात्रा 19 जुलाई को आरजी तौर पर रोक दी गई थी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि हालिया बारिशों के बाद पहलगाम रास्ते से यात्रा रूट पर मरम्मत करने की

से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने 1 ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है,

इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के 4थे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

सामिन, अभी तक आप आकाशवाणी दिल्ली से इस हफ्ता संसद में समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। रात के 8:15 होने को हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद। संगीत से भरा हुआ फौजी भाइयों का ये मनपसंद प्रोग्राम लेकर फिर से एक बार आपका दोस्त आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तमाम प्रोग्राम सुनने वाले दोस्तों और फौजी भाइयों को मेरा प्यार भरा आदाब। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

लीजिए भौजी भाइयों, सुनते हैं सितमगर फिल्म से प्रोग्राम का अगला नगमा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है मजरूह ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

हजुर भाइ, यो यति प्रोग्राम के आखिरी पेशकश नितिन मुकेश्वर लता मंगेशकर की गाए हुए इसी गीत के साथ आपका ये मनपसंद प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ चाहता है।

0: Esattamente questo programma che non ci capisce, io strumo strumo mi unifia. Mi rimu vevi che non c'è, a Kashvani, cargili che nentana granciot, vorspo, xabar ni tosun suk. Kasata a Kashvani, dehli che na, hindi, angrezi, dona, urdin, xabarun, rilevet, rilevla, gerbazat.
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं हैं मदद बस एक कॉल दूर है
2: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा मुख्य समाचार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया अब समाचार विस्तार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति

0: 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
4: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि

0: बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक

0: कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तालिब इल्मों की जीत करार दिया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के तमाम स्टेशन अब मुसाफिरों की खिदमत के लिए खुल गए हैं। इससे कबल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने सिक्योरिटी वजूहात के बाइस 18 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया था। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है और तकरीबन 1,15,000 लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ली हुई है। शिवसागर, चराइदियो और जोरहाट सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। सैलाब से मजीद 14 लोगों के अमवात की खबर है, जिससे रियासत में हलाक होने वालों की कुल तादाद 61 हो गई है। मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आसाम में सैलाब से इंसानी जानों के नुकसान और उससे होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल हो गया है और वो आज तीसरे पहर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। इससे कबल दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू ने भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत की। बुखारेस्ट में भारतीय बिरादरी के लिए मुनाकिदा एक इस्तकबालिया से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय बिरादरी के तआवुन की ये कहते हुए सताइश की कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकत दारी के अहम सुतून हैं।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर, रिसर्चर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने रोमानिया के अपने हम मनसब के साथ वसी मुजाकरात किए। उनका मकसद तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, काबिल तजदीद तवानाई और सकाफत के शोबों में बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना था। सदर जमहूरिया मुर्मू ने रोमानिया के वजीर आजम और पार्लियामानी लीडरों से भी मुलाकात की। नीज भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब किया। उन्होंने अननोन सोल्जर के मकबरे पर खराज अकीदत पेश किया। उन्हें इक्तसादी मुतालियात की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी के जरिए डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। ये एजाज उन्हें अवामी खिदमत और भारत रोमानिया ताल्लुकात में उनके खिदमत के मद्देनजर दिया गया है। रोमानिया सदर जमहूरिया मुर्मू के 3 रोजा सरकारी दौरे का आखिरी मरहला था। 3 मुल्कों के इस दौरे में मोल्डोवा और शिमाली मकदूनिया का दौरा भी शामिल था। उत्तर प्रदेश का कदीमी बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल हो गया है। आज जनूबी कोरिया के बुसान में आलमी मीरास से मुतालिक कमेटी के 48वें इजलास के दौरान इसे बाजाब्ता शामिल किया गया। आलमी मीरास की सरकर्दा फहरिस्त में भारत की ये 45वीं इमलाक है। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सारनाथ को आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर रूहानी विरासत का जश्न है। सकाफत और सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारतीय सकाफती विरासत के लिए एक अहम लम्हा करार दिया है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा सोना बेशा यानी सोने से तैयार मलबूसात के साथ रथ पर सवार देखे जा सकते हैं। रिवायती खूबसूरत जेवरास्ते आरास्ता इन देवी देवताओं के दर्शन के लिए पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज सुनावेशा में निहायत शानो शौकत के साथ रथ पर सवार हैं, जो खूबसूरत ताज, हार, बाजूबंद, बालियां और दीगर रिवायती जेवरात से आरास्ता हैं, और ये तकरीबन 208 किलोग्राम सोने और दीगर कीमती जवाहरात से तैयार किए गए हैं। ये पवित्र सुनहरे लिबास, जो सालाना रथ यात्रा की अहम तरीन रसूमात में से एक है, अकीदतमंदों के दर्शन के लिए आधी रात तक जारी रहेगा। पूरा शहर अकीदत के जज्बे से सरशार है। इस तकरीब के पुरमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के खातिरखा इंतजामात किए गए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क को मशरकी सूबे देर एल ज़ोर से मरबूत करने वाले कौमी शाहरा पर दो बसों के आज आपस में टकराने के बाद कम अज कम 35 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि सहराई शाहरा पर शहरियों की एक बस और दाखिली उमूर की वजारत की एक बस के दरमियान टक्कर में तकरीबन 30 अफराद जख्मी हुए हैं। इस हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हुई है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा दो रोज के दौरान छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने इस माह की 27 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। मर्दों की क्रिकेट में हरारे में तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया। भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का बड़ा निशाना दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 18वें ओवर में महज 129 रन पर आउट हो गई। भारत के बल्लेबाज ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए 3 विकेट हासिल किए। अपना पहला मैच खेल रहे यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए थे। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। भारत ने टी20 के नए कप्तान सुरेश अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज जीती है। आज कनाडा के ओंटारियो में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनहित सिंह ने मिस्र की बार्ब समे को 3-1 से हराने के बाद आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। इसी मकाम पर अब उनका सामना खिताबी मुकाबले में मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। इस मैच के भारतीय वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 10:30 बजे शुरू होने का इम्कान है। अनहित सिंह तारीख में महज दूसरी खिलाड़ी हैं जो जोशना चिनप्पा के बाद इस सरकर्दा खिताबी मुकाबले में पहुंची हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी ने एहतजाज खत्म कर दिया है, क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुजाकरात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया का 3 मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे टी20 बैन अलाक्वामी मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

खुका बयान उसके से आलम फथस चू

نبی میرا لتن

L'année, la compagne a dit